0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223733

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अपने अपने खुकरी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। जानकी गाउँपालिका के धर्मपुर में थारू समुदाय अस्तिम की लोक चित्रकला बखेरी कार्यक्रम संस्कृति संरक्षण में सबको जाने लगे पर्ने में जोर। साढ़े दुई महीना पछि टीकापुर नगर कार्यपालिका के बैठक प्रचलित कानून बमोजिम काम करना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्तोला के कहा। टीकापुर अस्पताल में बेरम्याहुकरण के चाप बढ़ती उपचार कराई बेरम्याहुकरा हप्ता दिन असरा लगे पर्ना ओ बेपत्ता आफन्त के खोजना छटपटैती काठमाडौं लंग। जानकी गाउँपालिका के धर्मपुरमा थारू समुदाय अस्तिमकी लोक चित्रकला बखेरी कार्यक्रम हुल्बा बखेरी कार्यक्रम है सम्बोधन गर्थे जानकी गाउँपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी। थारू समुदाय की चित्रकला है बजारीकरण करना उद्देश्य से कार्यक्रम संचालन करलक बटोले बाटे। उपाध्यक्ष लालमती देवी कठरिया से रैती गैलक संस्कृति चित्रकला संरक्षण करना पालिका के कार्यक्रम संचालन करलक बटोले बाटे। संस्कृति संरक्षण कर सकले सकेल काल के दिन में ऐना पुस्ता हुकरण समेत पुस्ता हस्तांतरण कर सकना बटोले बाटे। कार्यक्रम में शेखर दहित अस्तिम की चित्रकला के महत्व के जानकारी कराई रहे। थारू समुदाय के दो कथा चित्रा हृती गैलक ओ चित्रकला में विकृति फैलैटी रलक ओर से बखेरी कार्यक्रम संचालन करना आवश्यक रहा बटोले बाटे। वहां जानकी गांवपालिका के संस्कृति संरक्षण के प्रचलित करलक काम के बारे में थारू बाहुल पालिका में सीखना जरूरी रहा बटोले बाटे। बालिका चौधरी से थारू समुदाय हुकरण के संस्कृति संरक्षण के बारे में जानकारी करी थी। समुदाय में रलक लोक कला संस्कृति संरक्षण में बरघर के महत्वपूर्ण भूमिका रलक बरघर हुकर संरक्षण के लग आगे बढ़े पर्ना बटोले बाटे। कार्यक्रम सहजीकरण करती सोमदेव दौरा से थारू समुदाय के चित्रकला के संरक्षण करना आवश्यक रहो। अस्तिम की चित्र थारू समुदाय के मौलिकता संगे जोरगिल बटोले बाटे। बखेरी कार्यक्रम में समाजसेवी जनक चौधरी जगतराम चौधरी बरघर कृष्ण चौधरी से जिज्ञासा धरल भयंकल से महिला सहभागिता के ओर से बरघर बालकृष्णी चौधरी पुरूष सहभागिता के ओर से दिनेश कुमार थारू बोलल हैं। कार्यक्रम संचालन नेत्र प्रसाद जयसी करल हैं। बखेरी मा पालिका भीतर के बरघर भलमनसाओ जनप्रतिनिधि उपकरण के सहभागिता रहल रह। कार्यक्रम में अस्तिम की संबंधी समेत गीत फेका गिल रह। टीकापुर नगर पालिका के कार्यपालिका के बैठक बैठल भा। आम नगरवासी उपकरण के प्रतीक्षा में रलक चालू आर्थिक वर्ष के बजट कार्यान्वयन के लाग नगर प्रमुख से बजट खर्च के अख्तियारी देना विषय में फे निर्णय हुई भा। कार्यवाहक नगर प्रमुख के अख्तियारी देना विषय के भूमिका समेत भूमि व्यवस्था संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय में जानकारी देना निर्णय करल भा। बैठक से भूमिहीन सुकुम्बासी समेत भूमिहीन दलित ठुकरन के जगह प्राप्ति के लाख तीन पुस्ते भ्रेनक लाख फे भूमि व्यवस्था के समेत भूमि समस्या समाधान आयोग कैलाली में पठाइना निर्णय करल भा। उसतक घर निर्माण सम्पन्न हो सकलक मनो प्रमाण पत्र लेना बाकी रलक 2084 मसान्तसम म्याद थप करना निर्णय करल बा। कार्यपालिका के बैठक में कार्यवाहक नगर प्रमुख चयन करना आगामी बैठक में परामर्श करके पेश करना निर्णय करल बा। टीकापुर नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्तोला टीकापुर में पत्रकार हुकन संगे छलफल करल बाटे। नगर के विकास में सकारात्मक सुझाव सलाह के लाग भर्खरे सरुआ हो गया टीकापुर ऐलक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बास्तोला भेटघाट तथा सुझाव लेहल बाटे। पत्रकार हुकन संगे भेटघाट में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बास्तोला नागरिक हुकरण के सरकार संगे अपेक्षा बढ़ती गैलक को अपना हुकरा सेकट सम काम करना बतैती पत्रकार हुकरण सकारात्मक रूप में सुझाव देना अनुरोध करल बाटे। बास्तोला अपना नियमित सरुआ प्रक्रिया अंतर्गत टीकापुर ऐलक बतैती टीकापुर बैठक सम प्रचलित कानून बमोजिम निस्वार्थ रूपमा काम गर्न बटुलेबाटै उहाँ वास्तविक मीडिया हो। मीडियाकर्मी हुकरण के संरक्षण केला पालिका से सहयोग रहना हो। लोक कल्याणकारी विज्ञापन हे नियमित व्यवस्थित गर्न बटुलेबाटै खोजखबरमा एक घरी विश्राम विश्राम पास फेर सेबी सुन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: यो खाने मन त कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ।
2: तत एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नु पर्छ अनि को संसारको मजा लिन पाइन्छ।
1: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
2: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
1: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तै यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
6: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा 1 नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी छड्के तिलरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेण्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
7: दुर्गा ज्वेलर्स बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली सञ्चालक देव बहादुर सुनार सम्पर्क नम्बर 9868 40 16 60।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा भोटेकोशीमा अहिलक बारमा आफन आफन्त हे समेत हप्ता दिनसम्म कौनो खबर नै पैलक उहाँके मनै हुक्रा खोज्न समेत कहती यहाँके मनै हुक्रा खोजकलाग कहती काठमाडौँ निकटीबाटै जानकी गाउँपालिका मनसे हेराइल चार जनकी खोजी केलाग हरेक पालिका से हरेक परिवार से दुई जाने हो एक जाने समेत बरघर गाउँ अगुवा करके 9 जनकी टोली काठमाडौँ नगरबा उसका आफन बेखबर के समेत पीड़ा से छटपटी परिवार के सदस्य हुकरन खोजना निकलल एक हप्ता समके खैनाओ यातायात के व्यवस्था करके पठायल जानकी गाउँपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भानुभक्त भत्ता बटोले बाटे मंगर के यहां से नेंगला टोली बुधवार के संजय काठमाण्डौ पुगे पुगल समेत बर्घर रामकृष्ण चौधरी बटोले बाटे टीकापुर नगर पालिका एक समिति पूर्वमन से आपन खोजी के लाख समेत गैलक बरघर अखिल थारूफे 5 दिन से लेके नुआकोट के दगरामा बैठल बटोले बाटे दादा मान बहादुर उसको रसुआमा हेराइल पाछे अखिलो पड़ोसी विक्राम चौधरी वहां गैलक बटवागिल बा टीकापुर नगर पालिका एक एकतापुर के तेजुलाल चौधरी पूर्ण बहादुर खड़का संतोष चौलागाए उसको धना चौधरी काठमाण्डौ पुगे नुआकोटलांग गैलो रसुआमा सम्पर्क विहीन हुईलक आशिष चौधरी के जनिवा है दिल कुमारी चौधरी समेत बटोटियाल बाटे टीकापुर नगर पालिका के विपद व्यवस्थापन समिति से बुधवार बैठक में आफन्त के खोजी में जैना चाहला खुकरन यातायात खर्च बिहरना निर्णय करल बाकलो से नगर पालिका आवश्यक पहल करती कहती अब आफन्त हुकरन सम्पर्क विहीन रहलक हुकरन मंगलवार टीकापुर में पुगे विरोध करल रहे टीकापुर नगरपालिका के समितिपुर एकतापुर भूभू कमैया बस्ती मणिकापुर ज्योति नगर लगायत के क्षेत्र से 34 से ढेर कामदार कर्मचारी हुक्रा सम्पर्क विहीन रहलबाटै बाढ़ प्रभावित के सहयोग केलक सरकार से आह्वान करलक प्रधानमंत्री दैविक उद्धार कोष में सहयोग जुटाइती रहलबाटै टीकापुर अस्पताल में आबफे बेरामेन के चाप बढ़ती बा अस्पताल में गए एक दिन में उपचार करलक संभव नहीं रहलक उससे कम बेरामिया हुकरन के कहाई बा उपचार केलक एक हफ्ता जत्रा समय लगना करती रहलक उपचार में अलक हुकरा बटोटी बाटे पाचक समय में टीकापुर अस्पताल में बेरामेन के चाप फिर ढेर हुई गिलबा हरेक दिन अस्पताल में 600-700 बेरामिया हुकरा उपचार में इति बाटे सरकार से दुई दिन सार्वजनिक विदा दिए पाचे अस्पताल में पांच दिन के खुलती भाकलसे बेरामिया चाड़ पर्व वा और दिन विदा पर्लक खंड में अभिन्फे समेत कम दिन अस्पताल खुलती बा गैल हप्ता चार दिन के अस्पताल खुलल तीन दिन के विदा पाचे सोमवार के 15 गते अटवार में समेत अस्पताल में उपचार के लक समेत आयल 750 जानन के नाम दर्ता समेत करा गेल आकस्मिक सेवा इमरजेन्सी में तीन दिन में समेत 434 जाने सेवा लेहरबाट विदा वा और दिन करके अस्पताल में एक हफ्ता में 1100 से ढेर सेवा लेहल देख पड़ल बा अस्पताल में बेरामिया हुकरन के चाप बढ़ती रहल और से एक बेरामिया से सेवा लेहलक कमती में हफ्ता दिन समेत लगती रलक बटवागिल बा भजनी नगर पालिका काड़ा के राम कुमारी चौधरी छाला संबंधी समस्या रलक बेरामिया हुकरन के चाप ढेर रलक और से राम कुमारी सोमवार चेक करायलो रिपोर्ट पाई निसेकल हो बिफेक दिन के रिपोर्ट देखेन समेत पैना कलक मनो डॉक्टर समेत नहीं एलक वहां एक हफ्ता पास सोमवार केल उपचार कराईना कहल बाटे अस्तक जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर दुई प्रागीपुर के गणेश चौधरी फे दाँत संबंधी समस्या रलक फे समेत हफ्ता दिन पास केल डॉक्टर रहीन रिपोर्ट देखेन पायल सुनाइल बाटे अस्तक जोशीपुर गांव पालिका पांच बनकर्ता के सीता चौधरी फे नियमित थायराइड के औषधि खैना बाटने कलश से बिहान से लैके लाइन में बैठना हो 229 नंबर में नाव रलक सीता समेत बल तल चेक कराएल हो उदिन फे रिपोर्ट पाए निशेकल बटोल बाटे टीकापुर नगर पालिका के झुंगा बौनिया के किशोर चौधरी फे पत्थरी के समस्या बा वहां फे बिहान से लैके वीडियो एक्सरे के लाख लाइन में बैठे पड़ल मनो पाला समेत नहीं पैलक बटोल बाटे टीकापुर के निर्मला केसी फे पेट बठा के अस्पताल पुगल मन वहां फे चेक जांच करैना नई सेकल बटेले बाटे लमकी चुहा दुई मोतीपुर के समेत सावित्रा देवी थापा से श्रीमान है सुगर प्रेशर किडनी संबंधी समस्या रलक और से हाथ टूटलक में समस्या रलक हो वहां के श्रीमान के उपचार के लाग अस्पताल में लाइन लागलक हफ्ता दिन समेत पुगिल मनो वहां हाथ के समेत संबंधित उपचार पाइने सेकल बटोले बाटे टीकापुरमा सर्पदंश रोकथाम सम्बन्धी सरकारवाला हुकनसँगै बैठक खुल्बा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखाकी सभापति लोकराज जोशीका अध्यक्षतामा हुल कार्यक्रममा टीकापुर नगरपालिकाकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावलसे सपुवा मर्लक समेत परिस्थितिमा प्रणालीमा असर पर्न रलकोर्से मार नै पैना नै हुना बटोले बाटै वहाँ सन् 2030 सम्म सपुवा के कटपाके मौथुना 50% समेत घटाइन लक्ष्य रहल बटोजी टीकापुर के नगर प्रहरी सर्प उद्धारमा समेत मजा काम करती रहलबा राहुल से सपोसे काटल पाछे बेरमेहकुरन शांत रखना उस्तक टोकलक अंग स्थित समेत स्थिर धरना गहन व समेत कसिला समेत सामान हटैना तत्काल अस्पताल लैजाई पर्ना बटोले बाटे तथ्यांग अनुसार

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
1: के तपाईलाई थाहा भयो
4: सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सुर्ती सेवन गरेमा 100 रुपियाँ जरिवाना हुन्छ
1: कर्मचारीले धूम्रपान वा सुर्ती सेवन गरेमा अनुशासनमा नरहेको सरहमानी विभागीय कारवाही हुन्छ
4: सार्वजनिक संस्था वा स्थलमा सञ्चालकले धूम्रपान गर्न नपाइने सूचना टाँस गर्नुपर्दछ
1: सुर्ती प्रवर्धन हुने गरी कुनै संचार माध्यममा विज्ञापन गरेमा वा प्रायोजन गरेमा 1,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ
4: सुर्तीजन्य पदार्थहरू 18 वर्ष नपुगेकालाई गर्भवतीलाई शैक्षिक संस्थाको 100 मिटर वरिपरि बेचेमा फुटकर बिक्री गरेमा सजाएर राखेमा 10,000 सम्म जरिवाना हुन्छ
1: धूम्रपानले मुटु र फोक्सोलाई बिगार्छ क्यान्सर हुन सक्छ
4: चुरोटको धुवाँ वरिपरिका मानिसको फोक्सोमा प्रवेश गरी धूम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई जस्तै रोग देखिन सक्छ धूम्रपान त्याग्न नसके स्वास्थ्य कर्मीको सहयोग लिन सकिन्छ
5: सुर्तीजन्य पदार्थ होइन स्वास्थ्य रोजौं
6: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश
7: जन्म मृत्यु विवाह तथा बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरू 35 दिन भित्रै वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं
8: सानो उमेरमा गरिने विवाह गैर कानूनी भएकाले भावी जीवनमा समेत विभिन्न समस्याहरू ल्याउने हुनाले केटाकेटी दुवैले कम्तीमा 20 वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र बिहेबारी गरौं
7: आफूले वडा कार्यालयमा तिर्नुपर्ने मालपोत व्यवसाय जस्ता विभिन्न करहरू प्रत्येक आर्थिक वर्ष भित्रै तिरी फर्जी जरिवाना पर्नबाट जोगिऊ
8: आफूले सञ्चालन गरिरहेका व्यापार व्यवसायलाई वडा कार्यालयमा गई दर्ता गरौं साथै नयाँ सञ्चालन गर्ने व्यापार व्यवसायलाई दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने गरौं
7: वडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागी भई असल नागरिकको पहिचान बनाऊ
8: सार्वजनिक सम्पत्ति हामी सबैको साझा सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण र सम्वर्धन आफ्नै सम्पत्ति हो भनी गरौं
9: जानकी गाउँपालिका 6 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
2: विश्राम पार्षद फिर से स्वागत बा नो भोट नो टिकट कहना नारा सहित टीकापुर में टीकापुर डांस आइकोनिक शुरू हुई बा द काउंट डांस एंड जुम्बा सेंटर के आयोजना में बाल बालिका हुकरन के नृत्य क्षमता है उजागर करना उद्देश्य से तालीम के आयोजन करलक संचालक अर्जुन विश्वकर्मा बटोले बाटे प्रतियोगिता में प्रथम हुआ है 50,000 दूसरा हुआ है 25,000 और तीसरा हुआ है 10,000 चौथा स्थान प्राप्त करुया है 5,000 ट्रॉफी मेडल और तमाम अवसर प्राप्त करना कहलवा टीकापुर नगरपालिका भीतर 1500 विद्यालय में 120 जहान बाल बालिका हुकरन सहभागिता करेना जानकारी दिले बाटे यही समाचार संगे खोज खबर उराइल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से जानकी गाउँपालिका के धर्मपुरमा थारू समुदाय अस्तिन्की लोक चित्रकला बखेरी कार्यक्रम संस्कृति संरक्षणमा सक्कु जाने लागे पर्दामा जोर साढ़े 2 महीना पासे टीकापुर नगर कार्यपालिका के बैठक प्रचलित कानून बमोजिम काम करना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्तोला के कहाई टीकापुर अस्पताल में बिरामिया के चाप बढ़ती उपचार करेना बिरामिया हुकर हफ्ता दिन समेत अस्पताल आगे पर्ना ऊ बेपत्ता के आफंता के खोजक लाख छतपटैती काठमाडौं रंग गैती लीटा बकलत थारू भाषा खोज खबर आत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुना से भी अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते रहिए राम राम
10: नेपालगंज मेडिकल कॉलेज

0: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लीटर जार मा सर्वत्र बजार मा उपलब्ध छ।
1: डेलिभरी का लागि
0: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
1: टीकापुर कैलाली
2: संपर्क मोबाइल नंबर 98017 10672। स्वास्थ्य का लागि पानी

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आज इठा कना हो का कना हो। बाबा के ओस्टा बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई। कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं सीख थो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
4: अरेल्ला सुनचाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
3: अरेन्ला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98102635347।

0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैँभरिलाई।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य मावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम मझेरी के सलाह के बैठक सक्कू सक्कू रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहत मिशन अमी के टेक मोबाइल के साथ भेट प्रविधि संयोजन ओर से बाबू रत्नापुर मगर और मई बात अपने संग्रह माई मिशन संघारी कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई भी भरपूर आश्रम बटो संगा रूपये दुई तीन दिन मई एक छुट्टी व्यस्तता के कारण से अपने के संगे उपस्थित नहीं हुई सकल हो कलक सारी कहना चाहम कहे कि कबू कबू असिन असिन काम पड़ जाए ताकि ठेके ठेके समय में पुग नहीं पेबो कलक सारी कहना चाहम कहे कि अपने संगे मजा के बात नहीं बटवा पाइन तर आज मैं फैन से आगिल बाटो अपने के मजा मजा प्रत्योहार सुने के लग जस्ता गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर चिड़ी चुरुगन की आवाज जानवर की आवाज नेतन के नक्कल केकरो कैरिकेचर कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा यदि सुनना मन हुई कले से सुनई ना मन हुई कले से और अपने के प्रतिभा हमारे सुनने का एकदम तैयार बाटी तो सुनाए लग अपने के हम कॉल करे पर्ना रही 091-5-61-255 था 0915-61-255 लाइन एकदम खुला बा फटाफट डायल कर भी और कार्यक्रम में सहभागी जनेगी करना मैं अपने अर्जी अनुरोध और निवेदन करना चाहता हूँ। तो विशेष करके ये कार्यक्रम में अपने के कोई भी चैलेंज सुनना हो आज मौसम सुहाना बा पलघरी रमाइलो बा संघारे लगभग लगभग हमरे आज हमरे बटी ये भदौ महीना के लगभग लगभग 18 गते के हेक पर लगभग काल चाहिए कृष्ण जन्माष्टमी बा कृष्ण जन्माष्टमी के अग्रिम शुभकामना बा अपने होकन और आज दर खैना दिन यानी कि अपने दर खाए के एकदम एकदम तैयारी कर ठुगी कृष्ण भगवान के व्रत बैठुआ व्रतालु भक्त व्रतालु दादू भैया दीदी बहनों के चाहिए एकदम आज तैयारी कर ठुगी कि आज हमारे डर खाप सही जुन रात के डर खाप और काल चाहे व्रत बैठक करना सोच में बैठुआ सकू सकू दादू भैया दीदी बहन एकदम कृष्ण जन्माष्टमी के काल ही कृष्ण जन्माष्टमी के मंगलमय शुभकामना देती काली के एकदम आज रात के दर खाने तैयारी करते हुए और काल व्रत बैठने तैयारी करते हुए कना भरपूर आसने बाटो तो जे जहां हुई भी कार्यक्रम में सहभागी जनते कर भी सुनने 91-5-61-255 के लाइन में एकदम हमारे खुला कही सकल बड़ी कार्यक्रम के शुरूआत में सीधे गणेश करत ये रमाइलो गीत गीत के पास हमें आईने बाटो

हजुर, रमाइलो किशोरले आरके थारू और आरजू चौधरी की आवाज में रहे रे गोरिया दिल के हाल बुझले। बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम में अपने कनकला जोड़ी अपने जे जहां हुई भी खेतों में, बारी में, दुकान में, मकान में, काम में, धंधा में, बिजी में, बिपटाल में, यात्रा में, जहां हुई भी जोन ठाव में दूहे ठाव से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जन हुई ओकलक हमारा लाइन खुला था 091-5612-255 अर्थात 091-5612-255 लाइन एकदम खुला था। फटाफट डायल कर भी अपने करो हमारे रमाइलो फ्री का नाम है अपने जानकारी करती बाटो। विशेष करके कार्यक्रम में कोई भी टैलेंट सुनाई पर्ना भा आज एक दिन जस्ता गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला सारी शेर चिड़ै चुरगन की आवाज जानवर की आवाज नेतन के नक्कल के क्रू कैरिकेचर कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा यदि अपने ठन बाकल से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जन भी सुनाई लग ओकलक हमने लाइन खोला कैले बाटी 091-5612-255 अर्थात 091-5612-255 लाइन हमने खुला कैले बाटी। तो कार्यक्रम में चाहिए विशेष करके आईबी कल से अपने के संगारे आज सही अपने हुकन के कोई भी टैलेंट सुने भी और हमरे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में फिर बतवाब अपने ठाव में कृष्ण जन्माष्टमी कसे के मन ठही अपने ठाव में कृष्ण जन्माष्टमी कसे के मन थी कौन कौन मेरा कर थी कसे के कर थी अपने ठाव में डर खेना कार्यक्रम रहत कि नहीं रहत अपने हुकरे और दिन कसे कसे की कृष्ण भगवान के व्रत बैठ के का कर थी कना हमारे अपने हुकन के संगे गप करे लगवाटी। तो अपने हुके कार्यक्रम में सहभागी जनाई 091-5612-255 के लाइन एकदम खुला था कार्यक्रम में और कृष्ण जन्माष्टमी के शुभकामना देख लगता अपने आई सकती का नाम जानकारी क्रम। तो फटाफट चाहे डाल कर भी करीब करीब 1:45 बजे समय यात्रा कर भी अपने जहां रहे से जोन ठाव में रहे से कार्यक्रम में सहभागी जने भी का नाम आप लोग का निवेदन कर दो। तो कार्यक्रम के शुरुआत में एक ठो गीत बजाई गई फैन से ठाव गीत सुनना बेला हो गिलवा और अपने हुके जहां रहे से हमारे संगे संगे रवि यात्रा कर भी और कार्यक्रम में सहभागी जनई भी। तो डायल करते कर भी 091-5612-255 के लाइन खुलेगा और ठीक ठाक की जोड़ गीत के बाद समय एने बटूंगा।

जानकारी करते बारू तो डायल करते कर भी सुनने का 95561255 साथ में आज हमरे काल आज हमरे कृष्ण जन्माष्टमी के दर खैना दिन संगारे के दर खैना तैयारी कर रही भी शायद आते हुए जहां हुई भी आज रात के हमरे दर खैबी ओकर लगतीना टावन खोजत हुई हमरे ऐसी कैसी कर रमाइलो करके दर खाब कना सोच बनाई हुई और काल व्रत बैठक दिन भर भूखले रह के व्रत बैठक कना सोच बनाई हुई तो जहां रवि जोन ठाव में रवि कृष्ण भगवान के व्रत बैठु या तैयारी में रहल बाहर हुई भी तो घरे आई हुई व्रत बैठक लगाई हुई शायद तो आज के दिन फैन घर में कुछ हल पहल रही लागत महीन और काल तो कह व्रत के दिन दी गांव ठाव में रमाइलो हुई न रह गांव ठाव में चाहे एकदम मजा इंजॉय हुई न रह तो वो कार्यक्रम में फिर सहभागी हुई न हुई भी अपने शायद लागत और वैसे के काल व्रत बैठ के सेक के और दिन चाहे आज्ञा मतलब परोर के अपने अपन दीदी बहन लग कहारेक परत कहारल चीज छुट्टैल देहे जाए पड़ना रह पहुनी खेना दिन तो वो फैन सबको शायद अपने तैयारी कर रही भी लागत नहीं तो जे जहां रहा से कार्यक्रम में सहभागी जन टी कर भी अब ठीक ठो अष्टमकी के गीत जोड़ब अपने हुकन के लग एक अष्टमकी गीत जोड़ी अष्टमकी आईटा अष्टमकी का दर खेना दिन हो अष्टमकी गीते नहीं सुनब तो हम मजा कहां से लागी तो अठी हम एक गीत जोड़ब सोमति थारू के अपने संकलन में रह सोमति थारू समीक्षा चौधरी और वस्ते के सोनू कुसुमी के तीन जन के सामूहिक स्वर में रहल गीत ई हमारे अष्टमकी के एक गीत जोड़ब गीत के बाद समय ने बाटू डायल करते कर भी सुनने का 95561255 लाइन खुलेगा।

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत जोडली कार्यक्रममा यी अस्टिन की गीत रहे अपने हुकन पकै थे अस्टिन की आयल हस लागल हुई अस्टिन की टीके बाजी गैना गीत हुई और अपने हुकन पकै थे कुछ मन में लागल हुई कि अस्टिन की आय लागल अस्टिन की कुछ असल से गीत रहा था हमारे संस्कार हमारे संस्कृति हमारे हरेक चाड़ पर्व में फरक फरक हिसाब के हमारे चाड़ मनाई थी और फरक फरक हिसाब के हमारे गीत बांस रहन सहन खान पियन और रहन सहन हरेक चीज हमारे थारू समुदाय में फरक फरक बात हमारे अस्त संस्कार संस्कृति हमारे बचाई पढ़ना हो हमन ये चीजें हमारे अंगालिक पढ़ना हो ये चीजें हमारे पकड़ भी सबको जाने बचाई पढ़ना एकदम जरूरी बात तो जे जहां भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटा में यात्रा में जहां रहते हैं कार्यक्रम में सब आगे जाने कर भी अब अठी पर शॉर्ट कमर्स ब्रेक और जाए किसी व्यापारिक विश्राम और जाए व्यापारिक विश्राम के पास समय नहीं बाटू रेडियो छोड़कर कहूं फिर जी भी डायल करते कर भी 091-561-2055 तब संकल्प एक घसी व्यापारिक विश्राम
1: खाने मन तो कहा छ तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
2: तपे एक्लो कहाँ छ त्र यार त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि त थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
1: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
2: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्के काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरदम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
1: ओहो तैले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिछस् त यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश

बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम में जोड़ लिए संगारी लेवल अब कार्यक्रम निर्धारित समय डगर काटे लागल टाटा बाय के जन बेला हो गिल बा हमारे हमन कल ना करी हमारे बात करी ना समय नहीं हो अगे आज हो कृष्ण जन्माष्टमी के आगे के दिन यानी कि आज डर खैना दिन डर खैना तैयारी करते हुए डर खैना के लिए एकदम मंगलमय शुभकामना बा देवता शुभकामना बा सबको जनन सबको जने मजा के डर खैबी खुशी रबी और काल व्रत बैठबी सबको जनन व्रत के कृष्ण जन्माष्टमी के देवता शुभकामना देना चाहम कार्यक्रम मार्फत और संपूर्ण संगठन और सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम की ओर से और मोर व्यक्तिगत तरफ के ओर से और टेक में बैठल बाबू रत्नापुर मगर की ओर से फिर देवधर मंगलमय शुभकामना कृष्ण जन्माष्टमी के कहती एकदम जहां रवि खुशी रवि स्वस्थ रवि व्यस्त रवि व्रत बधाई रहे नमाई शुभकामना दीदी अंतिम एक रमाइलो गीत छोड़ती टेक में बैठ के साथ देखे बाबू रत्नापुर मगर के धन्यवाद दीदी मैं मिशन आगे हम राम राम जय दिन जय गुरु बाबा शुभ दिन अब केवल शुभ है रेडियो टीकापुर एफएम सुनते कर भी

0: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौ। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइस, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
6: घर परिवार में सभी बिरानी आखिर स्वस्थ रहना स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो। तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र? कहिले कोही बिरामी, कहिले कोही बिरामी, म त दिक्क भइसक्यो। कसो कालले छिटो नलाग्यो
7: होइन चाहिँ जो माइलो के बरबर बरबर कराइरहेको छ, के भएको छ तलाई?
6: हेर्नु न, साह्रै समस्या पर्यो क्या। कहिले के रोग आउने, कहिले के समस्या आउने, म त हैरान भइसके। छोरो उस्तै बिरामी छ, स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ, बा त्यत्रै बिरामी, सबै हैरान भन्या। म पनि पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ, भोक लाग्या लाग्यो हुन्छ, खानै सक्दैन।
7: तेरी माइला, यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ? त्यसको लागि त हाम्रो टीकापुरमा रहेको चण्डीबाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो।
8: हजुर, स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्, साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्।
9: सम्पर्क स्थान चण्डीबाई मेडिकल स्टोर, ढकलोला रोड, टीकापुर, कैलाली।

0: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फे का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 0 26
2: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा छड्के तिलहरी माइली तिलहरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेण्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला लक्ष्मी आभूषण भण्डार सिद्धार्थ चौक टिकापुर कैलाली संचालक प्रकाश भण्डारी सम्पर्क नम्बर 98 48 53 61 95
3: सिद्धापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्झ 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी ग्राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्जकै संग अनलाइनमा www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो मफे सुन्ति रहल बाटी। खोज खबर शुरू गरी खबरकै मुख्य शीर्षक छ। रसुवा बारीबाट सम्पर्क विहीन हुलक परिवार से आफन्तके हली खोजी हुई पर्नामा पैलाली जिल्ला अदालतमा 1.5 महिनामा 500 सिपे धुर मुद्दा दर्ता। रसुवा बारीमा मृतक के सम्मान मन भदौ 22 गते राष्ट्रिय शोक मनाइन सरकार के निर्णय। ओ जमरा शाखा जल उपभोक्ता संस्था टीकापुर के अध्यक्षमा मानबहादुर चौधरी निर्वाचित। आप खोज खबर विस्तारमा रसुवा बाढ़ी पाछा सम्पर्क विहीन हुलक परिवार सम्पर्क विहीन आफन्तके हली खोजी करपना माकर्लबाट आज इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरके ध्यानाकर्षण करैती हुक्र आपन सम्पर्क विहीन हुलक आफन्तके हली खोजी गर्न माकर्ल खुइट हुक्र कि लाज चाहल कि साँच चाहल कटी बजारमा न र्याली समेत निकार्कन इलाका प्रशासन कार्यालय पुक्क प्रशासनके ध्यानाकर्षण करैला खुइट। ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा बोल्टी इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरके प्रमुख तारानाथ पनेरु यी दुखद घड़ीमा हुइलक उहाँसे सम्पर्क विहीनके खोजीके लाग प्रशासनके उहाँसे फे पहल हुइटिरलक बटुइलबाट उहाँ आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालय थेसे गृह मन्त्रालयसम्म यहाँके खबर पुगैटिरलक ओ बेपट्टाके खोजीके लाग प्रशासनके उहाँसे पहल करतिरलक बटुइलबाट। रसुवा बारीमा प्रकट टीकापुरके 33 जना नागरिक आमिन फे सम्पर्क विहीन हुइलबाट। जमरा शाखा सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था टीकापुरकी अध्यक्षमा मानबहादुर चौधरी निर्वाचित हुलबाट। आज खुलक निर्वाचनके प्रतिद्वन्दी अमर बहादुर चौधरी पराजित गर्दै मानबहादुर चौधरी निर्वाचित हुलक हुइट। वस्तका उपाध्यक्षमा तुलबहादुर शाह निर्वाचित हुलबाट। प्रतिद्वन्दी वीरबहादुर घट्टी मगर पराजित गर्दै तुलबहादुर शाह उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुलक हुइट। सचिवमा हिरादेवी चौधरी पराजित गर्दै भूपेन्द्र पुन मगर विजय हुलबाट। सहसचिवमा एम नारायण शर्मा पराजित गर्दै तेज बहादुर चौधरी विजय हुलबाट। निर्वाचन समिति के सदस्य दामोदर खड्का निर्वाचन हुलक निर्वाचन समिति के सदस्य दामोदर खड्का जानकारी देलाबाट। यी बाहेक कोषाध्यक्ष 1 जना बड़घर सदस्य 7 जना महिला यी बाहेक कोषाध्यक्ष 1 जना बरघर सदस्य 7 जना महिला सदस्य 8 जना पुरूष सदस्य यी स्याघ नै निर्विरोध निर्वाचित होस्याकलबाट। कोषाध्यक्षमा सीता चौधरी बरघर सदस्यमा रामकृष्णी देवी चौधरी महिला सदस्यमा धनादेवी बुढा शारदा सुवेदी सुशीला चौधरी बीनादेवी कडायत विनिता कुमारी चौधरी पार्वती देवी चौधरी ओ सुन्दरी देवी चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुलखुइट। वस्तकन पुरूष सदस्यमा धनबहादुर साउट मोहनलाल महतो भीमबहादुर साउट प्रदीप कुमार शाह धीरेन्द्र बहादुर विष्ट फटे सिंह फटेजंग चौधरी जोखनलाल डंगौरा थारू पहल सिंह लुहार फे निर्विरोध निर्वाचित हुलक निर्वाचन समिति सदस्य दामोदर खड्का जानकारी देलाबाट। कैलाली जिल्ला अदालतमा चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 के 1.5 महिनाकै अवधिमा 560 मुद्दा दर्ता हुइलबा। चालू आर्थिक वर्ष के साउन्थेसे भदौ 16 गते समयकै अवधिमा विभिन्न प्रकृतिके ऊ मुद्दा दर्ता हुइलक हुइट। गैलक आर्थिक वर्ष 2082-83 से जिम्मेवारी सर्कन ऐलक 1534 ओ चालू आवकके 1.5 महिनाकै अवधिमा दर्ता हुइलक 560 लौव मुद्दा कैखन 2041 मुद्दा मध्ये ऊ 1.5 महिनाके अवधिमन 344 मुद्दा फर्से ठुलक अदालतके श्रेष्ठदार चेतराज पन्त जानकारी देलाबाट। यी अवधिमन फर्से ठुलक 2 मुद्दा मध्ये जिल्ला न्यायाधीश भुवन सिंह थापा 116 इन्द्रबहादुर करायत 104 ठाकुर प्रसाद पौडेल 52 व तीर्थराज भट्टराई 72 मुद्दा फर्सेट कलक उहाँ जानकारी देलाबाट। चालू आवमा जिल्ला न्यायाधीश थापा 833 करायत 824 पौडेल 824 ओ भट्टराईफे 824 मुद्दा फर्चेट करपना वार्षिक लक्ष्य निर्धारण करगिलक वहाँ जानकारी देलेबाट श्रेष्ठदार पन्तके अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा अनुमानित दर्ता हुलक मुद्दा संख्याके लगत 5016 रहलको वार्षिक फर्सेट लक्ष्य 3305 रहलबा कैलाली जिल्ला अदालत गैलक आर्थिक वर्ष 2082-83 मन 3105 मुद्दा फर्सेट हुइलक जनैलबा गैलक वर्ष अदालतमा आघक आर्थिक वर्ष 2081-82 मन जिम्मेवारी सर्कन ऐलक मुद्दा 1305 ओ गैलक आवमन दर्ता हुइलक 3334 मुद्दा कैखन 4629 मुद्दा रह। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछै निमिबाटी सुन्तिरहे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
4: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-42-73-59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
5: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ।
6: जानकी गाउँपालिका 1 नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
7: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
8: सुन्नुहोस् न, यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
9: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
8: अब किन टाला जानु, सिर्चाना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
9: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
8: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
9: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
8: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
9: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाई हाम्रो जिम्मेवारी।
9: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा सरकार रसुवाबारीमा ज्यान गुमैला खुकनकी सम्मान मन भदौ 22 गते राष्ट्रिय शोक दिवस मनैना निर्णय कलबा मन्त्री परिषद बैठक से ऊ दिन नेपाल भरके सरकारी कार्यालय व विदेश स्थित नेपाली दूतावास तथा नियोग हुकन मन नेपाली झण्डा आधा झुकैना निर्णय कलबा सरकार रसुवाबारीमा ज्यान गुमैला खुकनके सम्मान स्वरूप राष्ट्रिय शोक दिवस मनैना निर्णय कलखो बिहिबार दिनका बैठक मन्त्री परिषद बैठक से ऊ निर्णय कलक सरकारकै प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल जानकारी देलबाट उहाँकै अनुसार बाढ़ी मन मृत्युवरण गर्न मनिनके सम्मान स्वरूप ऊ घटना मन विलक 13 दिनके पुण्यतिथि पार्कन सरकार शोक दिवस मनाई लगलक हो भदौ 22 गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनैना निर्णय हुइलक उहाँबाट उदिन नेपाल भरके सरकारी कार्यालय तथा विदेश स्थित नेपाली दूतावास एवं नियोग हुकनमा नेपाली झण्डा आधा झुकैना निर्णय फे हुइलबा सरकार ऐना भदौ 23 गते सार्वजनिक विदा दिन निर्णय कलबा बिहिबार बैठक मन्त्री परिषद बैठक से ऊ निर्णय कलख हो आगत वर्ष भदौ 23-24 गते हुइलक जेएनजी शहीद दिवस के अवसर मन देशभर सार्वजनिक विदा दिन निर्णय हुइलक सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल जानकारी देलबाट सरकार रसुवाके भोटिएकोशी लड्डियामा ऐलक बारी पाछके खोज तथा उद्धारमा खटगिलक सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारी हन जोखिम भत्ता व खाजा खर्च उपलब्ध गराइना निर्णय कलबा बिहिबार दिनका बैठक मन्त्री परिषद बैठक से ऊ निर्णय कलक सरकारके प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल जानकारी गरेलबाट संघ उद्धारके क्रममा घाइते हुइलक सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारी हन निशुल्क औषधि उपचारके व्यवस्था गर्न निर्णय फेहुल्बा गृह मन्त्रालयके प्रस्तावमा हुइलक निर्णय अनुसार उद्धार एवं खोजीके क्रममा कौनो सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीके मृत्यु हुइलमा निजके परिवार हन 10,00,000 राहत उपलब्ध गराइना निर्णय हुइल्बा रसुवा भोटिकोशी लड्डियामा अहिलेक बाढ़ी पाछके खोज तथा उद्धारमा खटगिलक सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारी हन जोखिम भत्ता खाजा खर्च घाइटी हुइलसे निशुल्क दवाई उपचार मृत्यु हुइलसे निस्के परिवार हन प्रति मृतक 10,00,000 राहत उपलब्ध गराइना निर्णय हुइलक जनाकिल्बा खोज खबरमा फेरफेर विश्राम पाछै निनीबाटी सुन्तिरहे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
10: आइ हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल
11: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
10: मिस्तरान बर्जना हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
12: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
13: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
14: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरोसाइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
15: यही भदौ 20 गते शनिबारका दिन
16: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
14: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिजो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
16: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला
15: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 20 गते शनिबार
17: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल काठमाडौँ स्थित कूटनीतिक समुदाय नेपाल मन विपट निम्टैलक भोटिकोशी बाढ़ी के घटनाबारे ब्रिफिङ गर्नबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज आयोजित कूटनीतिक ब्रिफिङमा विभिन्न मुलुकके राजदूत, कूटनीतिक नियोगके प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विश्व बैंक व एसियाली विकास बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाके प्रतिनिधि उपस्थित रह। मन्त्री खनाल रसुवागढ़ी स्थित भोटेकोशी लद्यामा गैलक भदौ 10 गते ऐलक विनाशकारी बाढ़ी से निम्तागिलक विपद के पाछक अवस्था, सरकार के खोजी तथा उद्धार के प्रयास, विदेशी नागरिक के अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बारे फे ऊ करम मन अवगत गरैलबाट मन्त्री खनाल सरकारके प्राथमिकता प्रभावित नागरिकके जीवन रक्षा, खोज तथा उद्धार र विदेशी नागरिकके सुरक्षा रहलक बटुलेबाट मन्त्री खनाल भदौ 10 गते बिहान नेपाल चीन सीमा स्थित रसुवागढ़ीमा भोटीको सिलद्यामा ऐलक बाढ़ी से कुछ मिनटमा भारे परिणाममा पानी, माटी ओ गेग्रान बगाक तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारी क्षति पुगैलक बटुलेबाट उहाँ कल यी विनाशकारी बाढ़ीन हाम्रा हिमालयन सुनामी कहर रुचेवी काकरकी हालसालैकी स्मृतिमा हाम्रा असीन अनुभव करल निरली। उहाँकै अनुसार बाढ़ी र सुवासे त्रिशुली हुइटी नारायणी लद्या प्रणालीसम्म पुगल रह यी से रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा व चितवनके विभिन्न क्षेत्रमन समुदाय तथा भौतिक पूर्वाधारमन गम्भीर असर पर्लक उहाँ जानकारी गराइलबाट सरकार विपदके कारण हो याकर विनाश विकास क्रम बारे अध्ययन करती रलक जानकारी करैती मन्त्री खनाल याका लागि सम्बन्धित प्राविधिक विज्ञ के सहयोग समेत लेती रलक बटुलेबाट विपदके यी कठिन घड़ीमा नेपाल छिमेकी मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय से प्राप्त ऐक्यबद्धता सहयोगप्रति आभार व्यक्त कलबाट वहाँ सरकार उपलब्ध सकु राष्ट्रिय स्रोत परिचालन करती अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी से लगभग सहकार्यकर्क जैना ओ कूटनीतिक समुदाय विपद के अवस्था बारे नियमित रूपमा जानकारी करैती जैना बटुलेबाट। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढ़ी आर्थिक वर्ष 2082-83 के वार्षिक प्रतिवेदन सुदूरपश्चिम प्रदेश के प्रदेश प्रमुख नजीर मिया समक्ष पेश गर्नबा। नेपालकी संविधानकी धारा 294 की उपधारा 3 मा संवैधानिक निकायसे प्रत्येक प्रदेशकी काम कार्यवाहीकी सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गर्क प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर सेक्ना व्यवस्था रहलबा। उह संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगकी सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय बुधबारै प्रतिवेदन पेश गर्लख हो। प्रतिवेदन पेश गर्ना क्रममा आयोगकी सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख तथा सहसचिव प्रवक्ता प्रकाश दत्त भट्ट आर्थिक वर्ष 2082-83 मन कार्यालय से सम्पादन करगिलक विभिन्न गतिविधि, सुदूरपश्चिम प्रदेश के मानव अधिकार के अवस्था तथा मानव अधिकार के नवीनतम सवाल लगायत के विषय मन जानकारी कराईल रह। प्रतिवेदन ग्रहण करती प्रदेश प्रमुख नजीर मिया मानव अधिकार के विषय में आम नागरिक स्वयं प्राप्त जानकारी तथा सचेत हुई निषेक लगभग ट्वीलबाट मानव अधिकार के प्रवर्धन और सचेतना अभिवृद्धि के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करती रलग काम के लिए धन्यवाद व्यक्त करते वहां मानव अधिकार के विषय में प्रत्येक व्यक्ति सचेत और जागरूक हुई आवश्यक रहलक धारणा धलबाट। यो समाचार के संग खोज खबर ओराइल अन्तिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फेर्से। रसुवा बाढ़ी पाछ सम्पर्क विहीन हुइलक परिवार से आफन्त के हली खोजी कर पनामाक कैलाली जिल्ला अदालत में 1.5 महीना में 500 से फिर धीर मुद्दा दर्ता। रसुवा बाढ़ी

0: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा एक नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी, छड्के तिलरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: दुर्गा ज्वेलर्स, बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली, सञ्चालक देव बहादुर सुनार, सम्पर्क नम्बर 98 68 40 16 60।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: वहाँ अपन अनुहार बिगड़के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98 600 71 024 ओ 98 046 77 417।
6: टीकापुर नगरपालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
7: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
6: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
8: समयमै आफ्नो घर, परिवारको जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
9: जानकी गाउँपालिका, वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उकरा संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
2: सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेल बाट। आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
3: सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो, तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र? कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी, म त दिक्क भइसक्यो, कसो कालले छिटो नलाग्यो।
4: होइन चाइनिजो माइलो
5: के बर्बर बर्बर कराइरहेछ, के भएको छ हो तलाई?
3: हेर्नु न, साह्रै समस्या पर्यो क्या, कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने, म त हैरान भइसकेँ। छोरो उस्तै बिरामी छ, स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ, बा त्यत्रै बिरामी, सबै हैरान भन्यो। म पनि पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ, भोक लाग्या लाग्यो हुन्छ, खानै सक्दैन।
4: तेरी माइला, यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ? त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीबाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो।
6: हजुर, स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्, साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्।
7: सम्पर्क स्थान चण्डीबाई मेडिकल स्टोर, ठकरौला रोड, टिकापुर, कैलाली।
8: महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै इन्द्रेणी ज्वेलर्समा माइली तिलहरी, छटके तिलहरी, रामलीला झाला, पिजडा झुम्का, बाला, एक आनामा एक जोडी चुरा, बबी औठी, बेरुवा औठी, पेन्डल, एकदेखि चार आनासम्मका नौगेडी हारहरू, चन्द्रमा, मोटी चन्द्रमा र अर्डर अनुसार सुन चाँदीका गरगहना दिन साइनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ।
1: इन्द्रेणी ज्वेलर्स, बलभद्र चोक, टिकापुर, कैलाली। संचालक रणबहादुर सुनार। सम्पर्क नम्बर 9844404019।